0: biggest Asian mix. Now on Amazon Home Smart Speakers.
1: Play Sunrise Radio.
2: क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम, हाँ मगर ये भी सच है हमारी जान हो तुम। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे की सुबह शबनम साही के साथ। ऑन द वन ओकेजन आई गॉट द चांस टू सिट डाउन फॉर अ लेजरली चैट विद संजय लीला बंसाली। आई रिमेंबर आस्किंग हिम, वेयर डू यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हेन यू आर सिटिंग विद अ ब्लैंक पेज प्लॉटिंग योर नेक्स्ट फिल्म? Where does the first wave of inspiration come from? I mean, life would be a very generic answer, right? He looked at me and said, no, it's not life. It's music. It's always music. I nail the music for a story first, and then I work around it. You can believe that, right?
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
0: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday, 8 PM on Colors TV, powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour, taken from Cocktail 2. Bayani and Hardy Sandhu, I believe. Wallah. निर्मल जी, हाय विकम, वेलकम टू द शो। आपने रामायण का ट्रेलर देखा या नहीं, अभी जाके देखिए यूट्यूब पर। गुड मॉर्निंग।

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: Good morning, it's 10:21. Aap sun rahe Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. Now, I have a very important message. Kya aap jante hain ki childhood vaccinations bachchon ko best protection dete hain? England mein har saal 5,000 से भी ज्यादा बच्चों की मौत होती है बचपन के इन्फेक्शंस, सीरियस बीमारी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कभी कभी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी की वजह बन सकते हैं बचपन के इन्फेक्शन जैसे मीजल्स या वूपिंग कॉफ समाज में बहुत आसानी से फैलते हैं अगर आपका बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है याद रखिए NHS पर दिए गए सभी चाइल्डहुड वैक्सीन्स दुनिया में मिलियंस ऑफ बच्चों ने लगवाए हैं जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड एक्सेलेंट है प्लीज रिमेम्बर दिस अपने बच्चे को बेस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए उनके टीके उनके वैक्सीनेशन टाइम पर लगवाना बहुत जरूरी है अगर आपके बच्चे ने कोई वैक्सीनेशन मिस किया है आज ही अपने GP को कैच अप के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए क्या आपके बच्चे के वैक्सीन अप टू डेट हैं उनके रेड बुक को चेक कीजिए और अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क कीजिए फॉर इन्फॉर्मेशन NHS.UK/childhoodvaccinations पर जाइए
2: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
1: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday, 8 PM on Colors TV, powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft. You know, I was 100% confident that Khandala would be our preferred escape, weekend getaway. How wrong I was. Kumar Sanu, Alka Yagnik ki awaaz mein ye duet taken from the film Gulam. जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज शबनम साही के साथ होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल डे बाय द वे प्लान्स फॉर द वीकेंड पूछ सकती हूँ

0: हल्दी नमकीन रेंज, प्लेन भुजिया, आलू भुजिया, खट्टा मीठा, नींबू मसाला, नवरत्न मिक्स एंड मूंग दाल। ओए मैं फुल सिलेक्शन चख ले आया।
1: चितवाल्स मजेदार स्पाइसी इंडियन स्नैक्स, अ ब्रांड फ्रॉम एसओपी इंटरनेशनल, नाउ अवेलेबल एट मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन सुपरमार्केट्स। एंजॉय विद फैमिली एंड फ्रेंड्स।
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: With a little plus bakery spin, you can get a free bakery coupon every time you shop. Just scan our award-winning Little Plus app. Spin, win, and enjoy a free bakery item. Mmm. Little. More to value. One spin per customer per day, subject to availability. Ends 19th of August. 18 plus GB only. T's and C's apply. See little.co.uk/LPTV.
2: My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ki for 3 generations. Khanam ki, the legacy lives on.
1: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores.
0: Shabnam Sahi on Sunrise with Gullak on Sony TV. Love, laughter and a little family chaos. This is a show that you will instantly relate to. Watch Gullak starting this Sunday 9 PM on Sony TV.
1: This is Sunrise, the UK's biggest.
4: Kali UK te kade Dubai, hun meri zindagi same na rahi, meri da jaan vi mere na gusde gal na kare te galan pai.
1: Asian.
5: Aur dass kinni tareef chahidi hai tenu. Aur dass kinni tareef chahidi hai tenu.
1: Mix.

0: from the movie Student of the Year, Ishqvala Love, Horn at Sunrise. So it's a bit of a toughie then, today's trio, is it?
1: Is it?
2: Listener's Choice, brought to you by Colours TV.
3: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday, 8 p.m. on Colours TV, powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
2: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London. Nationwide on DAB. Worldwide via sunriseradio.com on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favourite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
0: Gold is trading at £98.07 per gram.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
0: All right, let's get another listen to this trio.
4: तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो?
5: है एक नजर में, पर बहुत ही भारी आइटम है, तुम नहीं उठा पाओगे.
4: तुम बस नाम बोलो. लड़के के साथ चाचा, मामा, कुत्ता, बिल्ली, मोबाइल, पिन, चार्जर सब मिलेंगे आधे घंटे में.
5: हर आधे घंटे में तय किया हो शादी, आधा साल भी नहीं चलता, समझे?
6: एक्सीडेंट में ठुका हुआ गाड़ी लग रहा है, पहले डेंटिंग करोगे फिर पेंटिंग कराओगे.
7: कितनी बार कहे फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर बिगाड़ना नहीं चाहिए.
0: कैन यू नेम ऑल थ्री एक्टर्स? दैट्स द क्वेश्चन.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।